ताबीरे लाइरे लगभग चाऊब देवी ने सकपनोद सपना बिलास आकाशवाणी इम्फाल हौसी का मुक्ताबीर से मैस नाम देवेंद्र सिंह दगी तार सहनाई।

0: अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
7: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
10: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security, and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are prepared.

ब्रह्मदुम दिए न दारी न खुन गंग न रे काई पारी मु बुने मा न सुई मु न सुई बे मा पली बंधो पुन मा न आयु यन दांग में दे बंधो ही दिन ताबे लम दो माये दे कुमी सिंह संभाल लांगे उते संकों सिंह खुगा ना भी वा समझे समलांग तुंगे ना सरे इतना फिर से मगर बुसे ले लेगा रंग को बनूंगा मैं दूधा न पाए साउंड वन न मुंह साउंड वन पलिए मुंह भी काम बुसिंग दूं मैं दूं न मैं दिमाग सना खाई दे लें।

औजेक्टा विख्रे सक्तम उमंगलाई हराउ ब तरामरी शुभतांक कोन्जेल द क्वायराक्पम सुन्दर मदि क्वायराक्पम मिनाक्सी सैसकी बसिंग इरुंगबम पद्मावती लौरेंबम बेडवती लाइश्रम लेबांग मसा मदि अमाईवी हेमोलता अईव लैप्राक्पम अशोक कुमार पुठोकप थांगजम इबोचा टेंगबांग बना हुईरेम प्रियोजी।

ताबिरे रेडियो डॉक्यूमेंट्री सीरियल उमंगलाई हरावबा तरामरी शुभ तांगक अहिबा लाइफ्राकबम अशोक कुमार पुथोकबा थांगजम इबोजा।

0: हे गुरुदेव, शोकन शमन व्यादवगी मम लब लोकनुंग शिरगी तो लब एकलब्यान थमोई सेंग न कौशरी लेंशिन बिरक लोननाई थमोई आशंद लेपीन रोननाई थमोई पंपाक्त गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परमा ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
1: एकलव्या
0: गुरुदेव
1: ऐ लागलबने ऐ गी थमोइबु नंगी भक्ति न चिंदुन पुरकले
0: गुरुदेव
1: कदाय लिरुंग तेंदोंग पाइखलो इपान नंगबु अस्त्र विद्या तंबीरगन
0: हे गुरुदेव कयाद नुंगाय रबते तोलब दस्सु एकलव्याबु पोपगी महियालन बिरवा कोटि प्रणाम गुरुदेव कोटि प्रणाम। हे जगत के गुरु एकलव्यागी थमोएगी गुरुदेव लौबियो कच्चर में बोल गया फंग महाईरा खरा से है दे
1: लौरवनी नंग्या घ नंगी पूजा
0: गुरुदेव।

0: chahui bo maya kaba khalak liba ai khoi lan mai mai jao bo mai ram that pa makai chol liba nong
1: bidya si kana de ki kam do un nang na tam lui madwai bo khang halu maduna shart ne
2: madre shart ge wapham natna tak thok jabnai gi chauk thok jabne
0: kul
2: eras kumar yeng bio
0: kono
2: ai ke guru dev ne jagat ki guru ne
0: kuri
2: agyan timirandaisya gyanan jan salakaya chakshurun militam yena tasmai sri guruve namaha
0: kuri
2: yeng bio jagat guru dona cha jage laba ki murti asine
0: kuri
2: ki guru dev
1: guru गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति
3: मानियामुं गुरुदेव मक्ने
1: हायो दशुपाखं नुंगी गुरु अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य
2: माने तत्पीरी बदो अस्यम बने
1: गुरु वंश की आचार्य ब्राह्मण द्रोणाचार्य
0: जशु मचा मगे शुगुरु
1: आचार्य आचार्य आचार्य
0: गुरुदेव
1: प्रणाम गुरुदेव
4: करी पाम मनो राजकुमार
1: जशु मचाशी कनानो गुरुदेव
4: कना दशु, लांग लिवादु करीनो द्रोज्जधार।
1: बोन नशीगर सोमथंग ब बोन नगड़ले हो रिबा दशु पाखंग तो बुने इन हंगजरी ब गुरुदेव।
4: नंग दशु पाखंग कनाब ऊरुबा, अदुगा, ऐंगोंडा ऐगे आश्रम द लाग लगा असंग न सगंग लबा, मशीगे आठक करीनो द्रोज्जधार।
1: गुरुदेव के अचान ब शिष्य बु करीगी मक अमुक लौट पीरी ब देव, ताक पीउ देव, करीगी तो मक अरोन शिष्य थम्न दशु मचा सोक्न सम्न याद रवा मदा अस्त्र विद्या तंबिरु रिबाते
4: ऐगे वाता खो राजकुमार
0: कुरी
4: ऐगे शिष्य दशु मचा कनास लेते करोन बस ओइसनो अफोंग बस ओइसनो तो लव दशु मबु लिशु विद्या तंबी गदबा इशागे फिरेप लेतबा मिशक मनते आई
1: देव
4: नंग कनाबु उरुबा
1: अदुबु गुरुदेव लेप्तुन ले होरी दशु पखंग दो मकुत्त लिरुं तेंदों चेत न पाई मखा चिकना खेत्री पुन्न मकुसिंग न दुना बोन नगर सिगी नाक्षेन बनी हाय महाक
4: न कोई न दिहे करम न खंगलिवा ऐ न मागी गुरु ने हाय बनी
1: महाक मसा मक न हाय रख पनी मागी गुरु दी अस्त्र गुरु द्रोणा चार्ज
4: करी हाय बा ऐ गी शिक्षा दशु पाखं
1: मानी दशु पाखं गुरुदेव दशु पाखं गुरुदेव
4: महक अदो
1: कुर कनो कुर
4: ऐ निंसिंग लगले महक सोई दन होई गनी नोंग मा इनाक लाग जरमे
1: देव
4: अस्त्र विद्या निजरमे दशु निहाय दुना ऐ ने इंतो
1: कनो
4: महाक ना नखो इधर कई दो रख पदगी न सिन्नाओ ने इपाद वाकत लरी बद्रुज्जदान
1: वाकत पनच्चदे गुरुदेव सेक्शन थोरांग में दुज्जदान थमजनिंगले बदे
4: करी सेक्शन थोरांग राजकुमार
1: नशी की सदान बगिला में तेन तगी नोंग न मेरम थत्तुना ऐ साहूई बुले काप अमुक्त द तेन जाई तरे न मया कबा कंदुना गुरुदेव गेरोन में शिष्य दुना कृत्य सिंह सिंह रखने गुरुदेव वांगां कम जाओ हुल्ले अत्ते दशु सिंगुम्ना नों थबाई ब मंगक माग इधे पांडे चक्षिण थोरांग इधे मक दुर्जधान थमजनिंगली बदे अशी गुम्बा अरोन में शिष्य कया मगा थम्बीरी बगे गुरुदेव ना
4: दुर्जधान
1: माने मजबक खंडोक चदबया दे दुर्जधान ना कृत्य सिंह शक्तम कंजन बगे दमा
4: न कोई बुशंग रखली बा दशु न मानव दुबु साथेंग न दुना अपमान पिरम्ब दिनतना ऐ बु निंदा तवगी करी अर्थ
1: गुरुदेव मागे लेरी बलि काप के थाक अदुदा लंबा तवया व खेत्री इरोई कना याउ तबना

0: इन जो शासन मुखाम न लक्ष्य बनी देव ताक पीव देव गुरु बल्क न कच्च बदान न खिनाद करी पेंद वले बीदर दुना तोल न दशू मचाद दगे अपांब करी ले बीदर माबुली सू विद्या तंबिरु रिवादे
1: ताको ताको नोते धावने दे दे ऐ मिन मखक न कोई न थ्यंगर लिबदो एक गले बियानी
0: कुनो
1: ऐ ईशान सत्तु न माबु कई दोंगे द सुखुलाई तंबी की दे अतो पकना मत दसु ऐ लिशु विद्या ताकी दे गुरु न चेंग चारक पदें
0: गुरुदेव
1: ऐ अरोन बलामी लेते चलो चलो खुलाई और आई जरूर सो
0: गुरुदेव
1: ऐ की मत मांगल लगे
0: गुरुदेव गुरुदेव
1: ओह जलाओ
0: गुरुदेव
1: नाक चत्री
0: गुरुदेव
1: करीगिनो
0: गुरुदेव
1: करीगिनो नंग ना की
0: ओ पाई ऐ दशु मसादु बो मांगन की बपाम जाइ दे
1: जधान
0: दशु खुदिंग मक ने एक कलब युगम नली शु है ये बो इरक लब दी कदाय दोनो खेत्री ये कोई निंग तंबदी सोई दन मक की मांग की गनी मकोई शु निंग थो कुबम की दमक तान रखनी मकोई मतुंग इंदो न भारत की काशिन को यागी उमंग वामंग द कुंडाले तारीबा बिल्कुल न सिंबक जाति कयान पुलपुन सिल्लक तुने लाल हो रखलब दी कदाई दनो खेत्री शासन कदों दनो इकोई शक्ति गुरुदेव देव माबु मंगन भी दब यादे गुरुदेव
1: करी माबु हाथ कदम ऐना
0: नत्र बदी कनाल दिमाग लंबा तोरुगनी दे
1: ऐ ऐ मधु गमलोयरा
0: मत बते गुरुदेव
1: ऐ गमलोय
0: गुरुदेव
1: मधु गुरु अमगी नीति की वांग मदनी ऐ मधु खत गमलोय
0: दुर्जन अदिति अदु होयरा बदि आ गुरु दक्षिणा गुरु दक्षिणा दि लोबी बयाई नम फम दगे
1: ऐ गि शिक्षण तब कनाद गि सो ऐ गुरु दक्षिणा लो वंगम लो इधर जाता
0: मशा मग्न गुरुदेव की शिष्य ने आजरी ब मंगों दगे गुरु दक्षिणा लो भी बदी गुरु अमगी नित्ति की मनुंग दनी देव एक कलप्य दगे गुरु दक्षिणा लो भी उदे
1: गुरु दक्षिणा मानवो करी पी वंगम जगदौरी बा
0: हाँ न कच्चरी बस हनालु पास ही दगे ऐहन बा मनी मुक्ता पांबीर बसु कच्चगनी दुर्जधाना गुरुदेव की पुकनी न पेन बीना बा बापा ना इधर बा कुरु के लंग गई दगे दशु मसाद दगे निबी के दब गुरु दक्षिणा दी ननाई दुर्जधान हंगच्चगनी दे मागी एकलब्ज की ये थंग मखुबी यदो गुरु दक्षिणा वन लोबी उदे
1: दुर्जधान
0: मदत्त द स्वदत पंगनी मागे मयोन चंखलक लिबे लिसु विद्या
1: दुर्जधान मदुदी का पुरुष की लिचनी वीर पुरुष समगी नीति न ते खंगो
0: वीर पुरुष की अमांग तो दुर्जधान खन पाम दे पांग पांग दबगी नहीं नबो वापम मदु नत्ते आई गिदी सुप्न तगी नम थब पुन्न मक पुन्नम तरग मकोक थक्त नेत्तु न पांडो पदो की दमक लिशु है रब मागी मकुट येत की तेन काप द सीजन नगदब मकुबी अदुत्तनी कत्तत्तु न लौ थोक पांबो है भी उदे
1: माइको माइको दुर्जधन जगत की थवाई पांबा मत्तन यानिंगलरोई दबा शास्त्र की नीति
0: यादवतोंगनु
1: राजकुमार
0: वरेंग सेरेंग फजब भाव बाप के दलाल की निंखाई दब मतोल मधु राजनीति ददी याव दे मधु दी संसार त्याग तौरब मुनि ऋषि सिंगी वाखलनी विधानी राजनीति की विधान दे शक्ति पाई नबगी दमक सिंहासन कन्न नबगी दमक पांबई पुन्न बक्षिजिन नबगी आय पापुण्य की काखल अमुक लेते शक्ति मुनबगे लांजंगा
1: रुजधन
0: गुरुदेव पुन्न मक्की मतुंगा महाराज धृतराष्ट्र की याथं अमतं आक्ष बहाई बसिली गुरुदेव की धर्म ओयगनी दना दे काउ भी रबड़ा गुरुदेव आश्रम थादोक्तुन लाक्पी की मतं मदुदा हिंजन बगी चानन बचेंग चाक राजकुमार सिंह की अस्त्र गुरु पद्मी कनान लांथो रखी निंग सिंह भी उदे
1: ओकले तोपलो दुर्जधन ओकले तोपलो
0: खेत्री मचाशा नखोई सुहायो ऐ बुत पत्त बतान गलो ऐ नहारी बसे चुंदा बड़ा
2: आदम नहीं आज

0: मचाऊंगे। शिष्य जगी गुरु ने गुरु लखना लगा।
1: एक तले बगी ये थमुखुबी गुरुदेव ने निभी का दबने। तेरी एक वाकी शक्ति की दबाक तुम ही दबने आधा बड़ी गुरुदेव।
0: गुरु लखना लगा गुरुदेव। गुरु लखना लगा गुरुदेव। गुरु लखना लगा गुरुदेव।
2: ये मुक्त खंड को खेत्री मचा सा न कोई अमुक तदी खंड को
0: खंड जरूर है। खंड जरूर है गुरुदेव।

0: एकलव्या इपहलाकले एकलव्या
1: हे गुरुदेव मंगला नत्तन ताईबंगल लेंग बिरकली तोलब एकलव्या आगे खंग पोक्ता पोक्ष मन्नी मही अलन बिरे तोलब एकलव्या आवो बर्ण संकोर वहिबने इन थोक पिरवा शोकन समद्र बदस्व एकलव्यान करीन पुजाता उजगने करीन गाक चगने गुरुदेव हे देव तो लब एक लब आगे प्राण दिए पुंब गुरु की चरों तक चर बने हैं ते
0: हाउ गल्लो इप्पा आगे एक कले बिया
1: गुरुदेव
0: हम शक्ति इप्पा लाग ले दना
2: प्रणाम गुरुदेव
0: हाउ गल्लो इसा सा न कोई सो एक कले बिया
1: गुरुदेव
0: नंग ना नंग यस्त्र गुरु बुधमो इच्छे न निंजा बना लिसु तेन सुदा लंबा ले तब बीरमो इबंगम जरगनी
3: गुरुदेव आचार्य
0: तब थौ दुर्जधान हायो इपाग यक्कलेबिया
1: गुरुदेव
0: ऐन नहाक पुकम दौना अस्त्र विद्या तंबीबा खेत्री मचा सिंगसिन खंगजनब
1: थमोइग कि मरीबो जगत कनान खंगब उबंगम गतबहे देव थमोइ नि फौनब ध्यान गि लिका पराग बिद्धान मुकनान खंगदब ब्राह्मण गुरु न दस्यु एकलव्यागी गुरु देव ने अदबो मधु थमोगी वानी राजकुमार मयागी संसार दुदगी कैदों ऐद सुबंगम लो
3: गुरुदेव
0: गज्जधान
1: नसे मंगोल की सेंगल बपुंग फम्मसिद गुरुदेव ने ननागी खंगबोक तलेंग बेरक पदे ननाइन करीन शबा कच्चे दगे तक पियो है गुरुदेव
3: एकलव्य गुरुदेव ना नफम दगी गुरु दक्षिणा लोब लेंग भी रखली
1: हे देव कयाद नुमाय बंग सेक लब्या गि थमोय गुरु प्रेम पाथोग लबन नाय शिच्च गि थमोय गि पाक्त चोंत भी रखलो तक पियो पुंगिन नफम मदद किनाए ते
3: आचार्य
0: एकलै ब्या
3: तक पीब मतम ओइ त्रिब्रा
1: हे गुरुदेव तो लब दशोने कच्च नव करी शुलेयम लोई खंबिर दुना यथ यखा चिक पीर ब्रने दे नना एकलव्य आगे लई जब पुरम तक पियो कच्च रगे गुरु दक्षिणा
3: गुरु दक्षिणा
1: खेत्री रेगी मानव सिंह ममांग गुरु दक्षिणा कटपंगम जगब अमगम नुहन नबी रगनो गुरु देव तक पियो सिंह दने हे देव
0: पागी एकलव्य
1: गुरु देव तक पी बनाया थंग इन जगने तक पियो गुरुदेव
3: आचार्य
0: दुर्जधान
3: गुरुदेव मानी मधुमक्खी निभेगा तब गुरुदेव
0: इप्पागी एकले बिया
1: सिंह ने तेरे तक पियो देव हाय बियो
0: एकले बिया
1: गुरुदेव
0: अथवा इन खट सरकली बनंगीली शु विद्यागी उपालसिगी मयोल सुइदप पीगा दौरे नहीं पाना इपाब वरौगनु हे अतिरथे
1: खमिन मनलं तक नरब गुरु अज्ञा पालन निरमक सेम साजर भय क्लब्यान तक पिरो गुरुदेव तक पिरो
0: इपा हायरगे
3: कल हाय बियो गुरुदेव
0: नंगे लिशु विद्यागे पांदम फम लाकलीबा ये थंगब खुद की खुबी अदो इपा द पिरो एकलै बिया
1: ननाय गिलाय बपोरी गुरुदेव खुदक अशिमक्त ददक कच्चर गने एकलव्यान गुरु दक्षिणा यो लौबियो हे ते कच्चर बनी थमोई शेंगना मतिक चाद्रव गुरु दक्षिणा लौबियो लत्न दन गुरु देव लौबियो
0: लौर बनी नंगी गुरु दक्षिणा ताहो एकलव्या नशिदगी नहाक दोना चार जगह फोंग बसित सोए रबने
1: गुरुदेव
0: इप्पागे बोरा से मशुलाओ खुबी आउ रब खुशा मरी दोगी लेका आपता जगत बासी पुनामक जगत क्या कन्ब पुनामक अमत तनंगी मांगले पंगम दबो वेरे सनाओ
3: गुरुदेव करी रुताक पिरी बदु गुरुदेव
0: प्रचधान
3: गुरुदेव
0: ऐ वो मतम मांगल गनो नंगी अपाम बपुनामक पंग थोक लेतना हल्लसे ही हस्तना पूरा
3: गुरुदेव
1: नश्री दसु सिंह मुक्मांग दे कौथोक पीखो सोगन सम्नव याद भी पल निंखाई रवा जगत की गुरु जगत गुरु ब्राह्मण द्रोणाचार्य के अपोंग में शिक्षा एकलव्य आगे मरु पपांग्शें खुद तले रूम तें पाई खच्ची नागल से खोएगी बन तू ही थवाई पान मगी दबाओ
2: जंगल की शाह उसे अमत तहात पे
4: यारोई
2: जंगल की शाह उसे अमत तहात पे यारोई
4: यारोई
5: जंगल बासी एकोगी निंग तंबा इजाद छिंग ना पे
1: यारोई अकोई भी की शक्तम काई थरक पर ठिंग मा मिलोई का कोई की थोड़े

0: मखोई वशक नाक
1: गुरुदेव
0: बोन भूमि के मशक नाक तुना पृथ्वी मताबो मोमो नोगन की
1: एकलब्यो
0: अवांग बजात टपोक पो ब्राह्मण क्षत्रिय सुना हिंग बगिय थोई अहेंद ताउरिंगे शक्ति की सुखोक तानरिंगे नोंग मत सुखन खिदे बोन वाशी बुकरम नंगा कनी अतोन बसिंग बुकरम न योखत कनी
1: गुरुदेव
0: तोल्लबनी हरिव दशु मचा सिंह दुना मकुट तलिरुंग सेत न पाई दुना ngakhi बोन भूमि मखई संसार
1: ऐ खोई सुंगा कनी ऐ खोई संसार धर्म युद्ध थिंग न दुना पांडव सिंह कंगरे हस्तिनाग सिंहासन कौरव सिंह दमक दुर्जधन दमक गुरुदेव कौरव तेंगल के सेनापति अमगी पांडम दी पांडव मांगन बनी पांडव मांगन ब परम सिंबा अदु खक्तने दशु मचा हमगी निंग सिंह थौमई की थौचा ओइदुना अरे बद मत मांगन बनते दे
0: दुर्जधन अदु हाक न फिंगत
1: गुरुदेव
0: नहक नंगे लांचंग द पोथा जरूर हो इंगसे थेंक्रे युथक अमम खाई ये क्रे सेनापति की याथंग नहीं
2: करी अचार्ज
0: नहक पोथा जरूर हो
1: गुरुदेव
0: काव गनुवश मशो सेनापति अम द लान गे लान थों सन बनंग न खक नक्षिन गद बनते
1: गुरुदेव प्रणाम देव
0: ऐ दी अहिंग अशिमदे वहंग अशिना हंगली बमखई नुंगाई खिगने अहिंगी चाउरवा लंजाओ अमगी थौरांग कौरव पखगी सेनापति अमगी थौदांग बु नमत्तुना थमो यशना हंगनिंगली लेगी सगाई मथक्त अकोईबगी फिबम ngakhiबा कौरव पांडव पुलान सिंह नरंबा अहिंग बमकोक अशिना हस्तिना पौर सिंहासन की दमक सौंक नरिबा शक्ति मुनब की दमक थेंग नरिबा महाभारत लंजाओ वो ऊरगा करी खली गबय कले ब्या करी खली गबय कले ब्या तुमादि देव पुरुष प्रधान तुमासा विश्वाच परं निदानम व्यतासी वेदांच परंच धाम तोया तत्तं विच्छो मंत्रुप
3: श्रीमत्तरो परम प्रेमद ज्ञान सिंधो संसार बांहि प्रशमेक्षण दिन बंदो श्री राधि करमाना कृष्णानुवादे शक्ति परांग वितर में पर

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजे निमितुंगपुंग तरानी ट्वेटारे आकाशवाणी इम्फाल की कंगला से निल अनिशुभ थोरम परें संदो पहुजरी संदो सेरिब मीडियम वेब मीटर सौनी पुदस में मार के लोहर चनिपान मरफुनि थोई हौजे मणिपुरी द पाव ताबिरशी
1: आकाशवाणी इम्फाल मरांग टीवी आई बिना पाव पाजरी अहमद मरुई पाव राज्य से नोम चंग्रब याद्रब पोलम पुब गारी सेक्यूरीटी अकन सेक्सिल थौरंग लोनना इम्फाल तम पुसी आसाम विधानसभा की बजेट सेशन गुवाहाटी की दिसपुर हौरे भारत सभापति कंजुमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी की मांग इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट की मापन सुब मिफम स्विट्जरलैंड की जेनेवा हौरगनी चथगद ब्रिक्स वुमेन वॉकिंग ग्रुप की मिफम केरलों की कोची पांथोलगनी राज्य से नोम चंग्रब याद्रब पोलम पुब गारी सेक्यूरीटी की अकन सेक्सिल थौरंग लोनासी तक अहम थो इम्फाल तम पुसी जीरीबाम पाउमी गाथें बिशोजीत हाई अयुब पुंग तरुक खर हेंद अहब कनबोद गारी चाम यांख सेक्यूरीटी की अकन सेक्सिल थौरंग लोनना इम्फाल कीदम जीरीबाम थादी गारी एल पी जी पेट्रोल डीजल अत पोलम पुब गारी यौरी अनीसुब कनबोय अहमसुब कनबोय मथंग अयुब पुंग तरेट निपान हेंद जीरीबाम की इम्फाल थादी अनीसुब अहमसुब कनबोय की इम्फाल तम लाब गारी चहुमदना सिमेंट या चा थब पोलम अत पोलम अपुनब मरा चेप भारत हिरम क्याद अचौब थौदांग लौरंब भारतीय जनसंघ की फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चाम कुनमंगासुब मपोक कुमोन लाकद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावन लुसिंब क्याने इकाइकुमनबो उलकली नमित असिना लाकद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मपोक नुमित असिना मरैबाक नुसिब अमसुंग लैबाक असिगिदम काथोकपग लोइनना सेवा तौनिमगी वाखलोनबु पुनिं थौगतपगी मपाल नायद्रब पाउजेल पीरि मुख्यमंत्री युमनांग खेमचा लुचिब इकाइकुमनबो उली मा की सोशल मीडिया पोस्ट श्री खेमचान हाय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुंसी लैबाक इं तप हिंसा लेतब लमदम काथोखी पुंसी की काथोप मियोब खुना की सेवाद लौरंब थौदांग लैबाक शांति की पाउजेल पीरि हुमुद्रा तरेट सुब बन महोत्सव पालन थौरंगी मनुंग चन्ना राज्य से तोंगान तोंगानब मफमसिंद सरकार की लोइसंग लनाय क्लब यावना लुपसिंगना उजारा सिंग थाबगी थौरमसिंग पांगथोकली थौरमसिगी मनुंग चन्ना ngasi सिंगाई लेन लाइकोन थौगल लुपना सिंदुना इम्फाल जिल्लागी सिंगारेल तेजपुरद लैबा सिंगाई लेन लाइकोन की अकोइबद उजारा सिंग थाक्रे थौगल लुप असिगी प्रेसिडेंट यावना मासीगी थौमीसिंगना मपुंग ओइबा थौदांग लौदना काथोकीबा थौरम अदुदा पांगथोकीबा थौरम अदुदा ओजारा कया थाकी अमरोमदा बनमहोत्सव पालन थौरम असिगी मनुंग चन्ना इम्फाल इस जिल्लागी एसपीगी एक मखादा इरिलबुंग पुलिस स्टेशनगी ऑफिसर इनचार्जना लुसिंगब स्टेशन असिगी पर्सनलसिंगी कांगबु अमना इम्फाल इस जिल्लागी कोंब कैथेलगी मफमसिंगदा लमतु सेंब अमदी ओजारा कया थाबगी थौरमसिंग पांगथोकी फाइनेंशियल सस्टेनेबल और कोऑपरेटिव्स एंड चेंजिंग इकोनॉमिक सिनारियो हाइब हिरम नोमगी सेमिनार मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोकली थौरम भारत सरकार की कोऑपरेटिव मंत्रालय की चाह मंगा सुरक्षा इरोना इंस्टीट्यूट और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इम्फाल मणिपुर डायरी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सहकार भारतीय पुंदना चयोल चुपना चथरप ऑब्जर्वेशन वीक लोसब मरी लेना पांगथोकनी मितई इंडिजेनस थांगता एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट की निफूमरी सुब मपोक कुमोन थौरम पांगथोकपग लोनना चाही तरानिथोय मखागी अंगांगसिंगी नौना पुथोकप मणिपुरी क्लासिकल डांस बसंत राज सरुक यारीबसिंग तरान ओपगी थौरम अमंगासी इम्फाल इस जिल्लागी कोंब केटी लैकाइद लैब इंस्टीट्यूट असिगी संगलेंद पांगथोकनी इंस्टीट्यूट असिना सिंधुना पांगथोकदुरिब थौरम असिदा जेन डांस एकाडमीगी डायरेक्टर पुख्रमबम बिलास यावना सकनायरब मियोय क्या सरुक यागनी आसाम विधानसभा की बजेट सेशन गुवाहाटी की दिसपुर हौरगनी मिफम असिद सेनबा चाह लिंग कुंतरुक कुंतरेट की चाह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट था तरह पुथोकनी मिफम कुंथा माथोद लोसगनी Amoronda Assam Vidhan Sabha's budget session asigi mangoinana Raija sida emergency service industrial growth hengatan ba amachung lengak sasan gi pibam hena phagatnan ba pandamda ngarang phangkiba Assam cabinet ki miphamna maru eba tongan tongan ba policies ngi ware ayaba pikre cabinet miphamadu luareba matung guwahati da paumi singa unaba amada mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na hai cabinet mipham aduna Vidhan Sabha mipham asigi manungda tongan tongan ba bilching reduce tongnaba ayaba pikre Med Department Hairi, Assam, Meghalay, Bihar, Nongchup, Uttar Pradesh, Haryana, Chandigarh, Delhi, Masung Nongchup, Bengal, Dangasi, Akanba Nongchup, Rubiyai. Bibak Asina Gujarat, Konkan, Gawa, Maida, Maharashtra, Masung, Chhattisgarh, Akanba Nongchup, Rubiyai, Haina, Red Alert, Rao Tokre. Tabi Riba Pao, Siakasbani, Imphal, Dagini. Bharatna Sabhapati Oidana Consumer Protection Law and Policy Gi Matang the Intergovernmental Group of Experts Ki Mapan Suba Mipham Switzerland Gi Geneva Da Ngasi Da Gi Hauragani Mipham Basi United Nations Trade and Development Sinbani Consumer Affairs Food and Public Distribution Mantralin Hai Mipham Basi Da Member States Consumer Protection Authority Tongan Tongan Ba Organization Amasung Stakeholders Singna Punna Phaminaduna Consumer Protection Law and Policy Ga Marilina Ba Tongan Tongan Ba Wapham Singgi Matang Da Kupna Khanagani BRICS Chairship Ki Makada Bharat Na Yumbu Oidana Numin Ini Chathaga Da Ba BRICS Women Working Group Ki Mipham Ngasi Da Gi Kelangi Kochi Da Hauragani Women and Child Development Mantralin Hai Mipham Asida BRICS Laibak Singgi Makok Thongba Sarkar Gi Official Singna Punna Chungchinaduna Lam Kayada Nupi Singda Ahenba Sakti Piba Haibasigi Matangda Khanagani Amaromda BRICS Laibak Singgi Lusing Basingi Oiba Anti-Drug Agency Singgi Numin Ini Chathagada Ba Mipham Ngasi Da Gi Guwahati Da Hauragani Home Affairs Mantralin Hai Mipham Asida BRICS Ki Sadasya Laibak Singgi Anti-Drug Agency Singgi Makok Sing Amasung Makok Thongba Official Singna Drug Control Agency Singgi Marakta Tengbang Pinaba Hengalhanabagi Matangda Khanagani Mipham Asida Operation Chathabada Tengbang Pinaba Intelligence Ki Pau Pithok Pisin Tongnaba Capacity Building Amadi Punna Daita Longminaduna Drug Kamari Lenaba Gehlakpa Kaya Mapung Phana Mayoknaba Ngamnabagi Matangda Wari Sanagani Pradhan Menteri Narendra Modi ki namit taruk ni gi lebak ahong gi kongset ngasi da gi haukre kongset asi ahan ba saruk oina Pradhan Menteri na ngasi Indonesia da thonglaba matung Sri Modi na Indonesia gi Rashtrapati Prabowo Subianto ga unagani unabadu da Bharat amasung Indonesia gi marakta lainari ba comprehensive strategic partnership gi matang da khanagani Tungda Indonesia gi konung Jakarta da Pradhan Menteri na mapham adu da leiba Bharat macha singa unaduna wari chanagani Pradhan Menteri gi ani suba khongchal gi sarukta Pradhan Menteri na tha asi gi Nepal da Australia gi Melbourne da thungani Pradhan Menteri na Australia gi Pradhan Menteri Anthony Albanese ka loina na hum suba India Australia annual summit da saruk yagani Mahaki Kongchat ki ahum suba saruk oina tha ase ki tarada New Zealand da satkani masida Pradhan Menteri na New Zealand ki Pradhan Menteri Christopher Luxon ga lebak ani gi marakta leinari ba tongan tongan ba mari singi matang da punna wari sanagani Pradhan Menteri gi New Zealand Kongchat asina sahi ni phu gi matung da Bharat ki Pradhan Menteri na amana New Zealand da satpa ahan bani Chemical amasung fertilizers mantaloi na hai har amasung har chem bada changwa polam ching puba besel tara manga bharat ki dama state of hormuz lan thokre mantaloi na hai besel tara manga asigi manung da besel ni panda urea metric ton lakh om lising kunta ni to yauri aduga atopa besel maridana dai ammonium phosphate metric ton lakh ani lising yangkhai taret amasung lemhori ba besel omdana sulfur metric ton Lak amalising trama to yauri chemicals and fertilizers ki kendriya mantri JP Nadana hai nongchup asia da sarang na ba phibam mayok na ba asina global supply chain da ayet pa piwa ga loina na masina laibak sida har gi mamal ka hen wa khalan ba masung har sing puthok pachin tawda matam ka hen sangan ba gi achoba machak oiri mahak na makhatan hai department of fertilizers na rises Sarkar singa leptana tathok tasin tongnaduna laibak asida har marang kaina amasung niyom chumna phanganaba leptana hotnari FIFA World Cup lising ani kuntar ki round of 16 gi ngarang ahing nongyai matung pung ama makai tabda sanakiba mesta Norway na Brazil bu panjal ani amada toikre 하우지 에유키 봉타루 마카이다 자나키바 메스터 잉글랜드 멕시코부 반젤 호마니데 토이크리 나시 에행 농야이 마퉁 봉카이 셋바다 포르투갈가 스페인가 사나가니 아로이베다 마루이바 파우 아모 라이자시다 노마데 상드바야다바 폴람포 바가리싱 세큐리티기 아칸바 세클 토랑글레나나 임팔 탐나 부실럭리 Asam Bidhan Sabha ki baje session Guwahati ki Dispur dang asi dagi haukre Bharat na sabhapati oiduna Consumer Protection Law and Policy ki matang da Intergovernmental Group of Experts ki mapan suba mipong asi dagi Switzerland ki Geneva da hauragani amasung Numini ni chatha ga da BRICS Women Working Group ki mipong asi dagi Kelong ki Kochi da pangthok lagani paului jare
2: HIV ga sago na na hingliba miwai singbu Hantana yengba amadi tati tawoina ta wiroi dabani. Karigumba hairiba thawong singasi sataram labadi. HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 gi makhada serak choidana phangani. HIV positive orba miyoi singbu. Natraka HIV na sohalaba miyoi singda tati tawoina tawba makhoi gi maral mathum
0: program se do tuna tang labadi. Ambassment
2: complaint
0: ta wiyai.
2: Complaint form
0: HIV-AIDS
2: ki maramda hena kuda kuda bhakta ma HIV-AIDS toll free number 1

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
3: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
4: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
3: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
4: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
3: जी,
4: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
3: जी,
4: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
3: जी।
4: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
3: जी।
4: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
3: जी।
4: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
3: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
4: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
3: जी,
4: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
3: जी,
4: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
3: जी।
4: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
3: जी,
4: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
3: जी।
4: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
3: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
4: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
3: जी।
4: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
3: जी
4: विद्यार्थी को
3: संकोच
4: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
3: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
4: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
3: जी,
4: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्यपूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
4: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
3: जी।
4: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती है। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
3: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
4: जी, रिजल्ट से
3: जी।
4: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
3: बिल्कुल,
4: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
3: जी।
4: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
3: जी।
4: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
3: तो आराम कर लीजिए,
4: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
3: जी हाँ जी।
4: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
3: जी, जी।
4: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
3: जी।
4: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
3: जी,
4: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
3: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
4: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशन हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
3: मनोबल बढ़ता है।
4: जी, जी। और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
3: तालमेल
4: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
3: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
4: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
3: ऐसा होता
4: उसके
3: है।
4: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
3: जी।
4: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार
5: जी,
4: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है
5: जी,
4: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: जी
5: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
4: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
5: हाँ।
4: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
5: हो सकता है,
4: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
5: जी।
4: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
5: जी।
4: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
5: बिल्कुल,
4: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
5: जी, उसी को।
4: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
5: हाँ, होती है।
4: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
5: प्रयास
4: वो सफल
5: किया?
4: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
5: जी।
4: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
5: हाँ, होता है।
4: तो इसका मतलब क्या हुआ
5: जी?
4: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
5: जी।
4: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
5: थोप
4: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
5: हाँ, प्रोत्साहित करें,
4: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
5: जी,
4: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
5: जी,
4: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल पे भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
5: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
4: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
5: जी,
4: 8448440632 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
5: जी।
4: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
5: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
4: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: उमंग ताबिरे थौरम असी NCERT की तेमांग लुइनेना सेंटर जब थौरम ने थौरम से डॉक्टर नतान जेलबा से आकाशवाणी फालगी कंगला से निलदगिनी नंग ने हिंगलिंगैदा तौबे याबा पुनमक तौरम असीब अमगुम ने हिंगनु थबकते थवाय यौसिनबा अमसु पुंगनिंगि पामजबा अनिसिना कनागुंबा असंब मिसक अमबु मिथुय मिहेनबा मियम ओहेन्नबगि लंबिनी वाफम सिगलुइनेना मणिपुरी फिल्म मिसेसिंग पुजरगली।

0: ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯁꯤꯡꯍꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩ
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
4: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं,

0: डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ चकानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ चकानेन।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग

ने कहा है कि अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

कार्यक्रम भूले बिसरे में प्रस्तुत है फौज भाइयों के लिए ये पहला नगमा, शमशाद बेगम की आवाज में 1991 की बहार फिल्म से ये गीत है। काफ़ी दिलचस्प और मनोरंजक फिल्म है बहार, जिसमें रोमांस और परिवार के पहलुओं को खूबसूरती से दिखाया गया है। इस फिल्म का लोकप्रिय गीत है यही गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सैया दिल में आना रे। सचिन देव बर्मन के संगीत में बनी ये गीत है और इसके बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण द्वारा।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से, आवाज लता मंगेशकर की और गीत के लेखक मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।

रात का समा, झूमे चंद्रमा। आइए ये गीत सुनते हैं जिद्दी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, बोल हसरत जयपुरी के और सुर सचिन देव बर्मन पर। जिद्दी फिल्म में नजर आए थे जॉय मुखर्जी के साथ आशा पारेख और सहायक भूमिकाओं में शोभा खोटे, महमूद उल्लास, धूमल, राज मेहरा।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आ से। ये अगला गीत है फौज भाइयों के लिए। शब्द रचना शैलेंद्र द्वारा और सुर प्रदान किया शंकर जय किशन। इस फिल्म में नजर आए थे राज कपूर के साथ नरगिस दत्त, विजयलक्ष्मी, प्राण मुकेश, लीला मिश्रा और रमेश सिन्हा। और ये फिल्म आई थी आर के फिल्म्स के बैनर तले।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में भूले बिसरे। कार्यक्रम का ये अगला गीत है परदेस फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज में मेरे घुंघुर वाले बाल। इसके लेखक हैं शकील बदायूनी और संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

लता मंगेशकर की गायन में। कार्यक्रम में ये अगला गीत है बोल, राजेंद्र कृष्ण द्वारा, और संगीत निर्देशक हैं हेमंत कुमार मुखोपाध्याय। इस फिल्म में नजर आए थे प्रदीप कुमार के साथ वैजयंती माला, मुबारक, मेनू मुमताज, और ये फिल्म थी अनजान, लता मंगेशकर द्वारा इसका

फिल्म अलबेला से। यह हर्ष भरा गीत है लता मंगेशकर और चीतलकर की आवाजों में। गीत के लेखक राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार सी रामचंद्र। इस फिल्म में भूमिका निभाई थी गीता बाली के साथ भगवान, प्रतिमा देवी, बद्री प्रसाद, सुंदर श्याम दुलारी। और इस फिल्म के

आकाशवाणी इम्फाल और अचू पाउ नाम से चने वन अहम सिमरान पामले रिमे कप तक हमताई पाओ सिमिक्षो को नहीं थंग पम गी जे ब्रिक्स वीमेन वर्किंग ग्रुप वी गजे अचू वी ऐने गेरलाम वी को जिले हाउपा कौरा असम लेजिस्लेटिव असेंबली वी थ्रदक थ्रुक बजेट सेशन अजे दिसपुर ले बम पकौर अचू के चांग बे डायरेक्ट थुमरादा खतंग कुप संग्रा नुलै ही वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिमिक्षो थ्रुक थंग विवांग इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया कला न्यूजीलैंड सोंजा विवांग अचत फोकैरा र पाउपिंजी मैसाइन पामेले ब्रिक्स चेयरशिप वी आजिंगली इंडिया न हो समिट सिमिक्षो खनि थंग सागे गिजे ब्रिक्स वीमेन वर्किंग ग्रुप वी मीटिंग अचु वी न गेरलम वी कोजिले होपोकौरा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री न हांगा गजिप हिले ब्रिक्स ngalei वी अखोका सरकार वी ऑफिशियल member ping rang room the sector ge jivle shinaw ping ni pangshap khami ge jui pongling san ni room ra la ka shong bricks ng leping wi akoka ping wi anti drug agencies ping wi chimik shok ni dang pam ge ge ji meeting indiana ho samida achu wi in a guwahati le pam pokai ra home affairs ministry na hanga ge ji phile bricks ng le wi member ping wi anti drug agencies we akoka pingla senior officers ping a drug control agencies we along le ngjon ming ro khawai wi pongle ngsan ngrum ra gajipile operation khu ga kale katom ro khawai intelligence we pau mishok mizang sakang rock capacity building gala institutional le kachicha we od ngrut khu ngrum da drugs le khangasuna apong ge jevale mapong phala gaina ngrur shap khawai wi maram le karjan sang rum ra Board of Secondary Education Manipur Nakakui High School Leaving Certificate Compartment Exam 2026 will result aje shok mi hora Chief Minister Yumnam Khemchan na aje Lamboi Khongnang Khong Relief Camp le indak le internally displaced person ping kazat kazada khleping ne paisa we khangchon mi haira aling soda rajya sabha member kala bjp manipur state president kurumla atikari mayum sharda devi emele kala state sarkar senior officer ping ngyura electoral rolls we special intensive revision enumeration phase we dili published kasa draft electoral roll we atishura manipur le voters lak strategico point tumrada medina aya infali press conference kasale manipur chief electoral officer arun kumar sinha na hanga khangaruma voter swing chaile mayana voters lakchiko thinghangmati shamati hangthruk ta thruk na shanauna voters lakchiko thinghangchiko da gathum sha thruk hangthruk kala third gender na voters chakni hangchiko da medina chuntarik magada jishat aina tangda enumeration forms lak mku thing hangchiko da gathum hangshini da thruk yauga haile voters lak strategico thing thum rada mati sha ga thum hangchiko da jiko na ngshai khuya khuir sinha na ka hang dio pingwi khangjon manga aina district thrada thrukle enumeration phase e kup sang shapna draft electoral rolls jile mamya khangai le ya kha august mati ne tang da we along ne ram shung khui pai ra final electoral rolls se september direct thuk thang publish sa haura assam legislative

0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯤꯊꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯣꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯁ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗ ꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯈꯜ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯦ, ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯔꯠ 1850 ꯑꯗꯒꯤ 1800 1900 ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯔꯣꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤ 280 ppm ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯔꯁ ꯄꯔ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ 280 ꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ 430 ppm ꯌꯧꯁꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ ꯆꯨꯕꯗꯧ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯨꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯉꯥ ꯏꯉꯦꯁꯇꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯨ ꯇꯦꯟ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝ ꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯖꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯟꯅꯔꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯁꯥꯎ ꯊꯣꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯖꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄ꯭ꯔꯤꯡꯁꯤꯡ ꯏꯐꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ
1: ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯑꯣꯔꯦꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯜꯂꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯗꯤꯖꯜ ꯕꯥꯏꯑꯣꯐꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯖꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯩ ꯆꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯃꯣꯁꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕ 100 ꯃꯔꯐꯨꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯅ 2015 ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅ ꯁꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨ ꯄꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯃꯗꯨ ꯂꯤꯒꯦꯜꯂꯤ ꯕꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ 195 ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯈꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯦꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯟ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1.5 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯎꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ 1.5 ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯅꯥ ꯁꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯃꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ 1.4 ꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯁꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ 2035 2005ꯁꯤꯅ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯅꯤꯡꯒꯗꯧꯅꯦ 2035 ꯑꯗꯨꯒ 2050 2050ꯁꯤꯗꯅ और मेरे सेन दिलु ले बा मना ही गुम्बा सुबह खलग था जाने गा
1: तो का उसी थारे का अको यहाँ तो था लंबा न तब मन मौसम के पालन थोड़म सी का मरी रहना ना उठारे यार का मेरा यार का लंबा मगर तब न तब हिंग ना को की नसी यार मथों ताई न खंजे सुगम बदी सुम सेक्शन थोड़ांगी मतांग बदी डिपार्टमेंट के मैगे भी करी करी वो ही ना बस
0: यहाँ पर जब वहाँ ने सिगे भागी है मगर लोने ना यहाँ उठ गए तेरे मतलब ना मफ़म उनका उठा बदा स्कूल लंबी कैंपस है मदा उठा बने सही खर्गे मांग दनी मफ़म से इधर कोई की प्रोग्राम से लो रे उठा भी पालो अल होर से ना तो वो मतलब से इधर कराये तो उठाने है तो दी बीआईपी सिंह कराये तो उठाने है ना तो मतलब से स्कूल लोगी सब इधर आता ना यो पाम पोर से थोड़ा गया है सीधी कोई की होजी ले लिया लंपाक से की असों की अवांग थम की कसन से ऐसे जो सही हो जिंगी था बनी सी पी आई पी की उठा बनी सही हो गई सही तरह कुन से सुन था रख बने है
1: वो उदी ले था
0: होय और उदी ले था बा अदुना सी की मतांग से था अदुना अकोई उठा बनी वो खल लों दी अकोई याम पसन्द ले रहे को अरु याम अरु भी तो हिंगन मचने वो हिंगन पसी याम अरु हो रहे वो अतो ना करी उदो थार गए हिंद्र के दी करी तो अतो ना हंतक एको ये यहाँ की बच्चे ही खर्च देता एको यहाँ कर लेकिन पैसे भी थारे वो उसमें से नौशो इधर हिंद्र भी आ रहा है इधर अतो ना करी दोगे इधर थारे वो मफ़म सिंह से एको ये क्लब नारों सिंह नतर का खंजा सिंह की उनसे लगा सीधे थारे वो उसे हिंद्र भी आता वो निको है वो वाखल लोला माँ अकोई योने से आप जन भी अरुगा अनो बाप ममांग द तो बसिंग द तकी कितन खेना बाप मसे अकोई ना भारत की ओने से हो जी एक पैर माक ना मन पालल मत हो रही था आई बती मैं पुं खुद ही मग इंडिया द ले दी बस सिद्ध जन खुद ही मग इमा की मिंग द उपाल मम था से है था आई बती इमा की मिंग द थार गति आई ने थार गति मत हो हिंगन दूरी ने बस हो रही था सिगी स्लोगान से मगा अरे की मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना कोई ना निगोन बन ना ना निगोन बन आई बती निगोन सिंगो इबो उमंग है था ना सिगो वाखलोर को पुत्र
1: निगोन सिंग
0: था तो इबो आई था गदो इबो मापम हाँ बोला मामू ऐरा मापम ने सेंगोल इबो उमंग अदो करी के दमक तना निगोन सिंगो इबो बन नहीं है था ना अदो तारी मखोई को वाखलोर जन्द मदो सिंपे शो इतना कोई हिंगन दबे आते है वो वाखलोर ला मापूंग ना ना गोई दमक तको अरे की अकोई थारी बो अकोई की प्लांटेशन तोड़ी बस जगह आपको दिमाग से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस आप माइडर फॉरेस्ट का वो ये फॉरेस्ट वगैरह मापा मम लोई में साइन तब था मैं अरुगा मापा ने रिकॉल मॉनिटरिंग तो वनी अरुगा कुंजा सिंह तो ना मापा के मापम तो दा तो का वाइबे सिंह चाय भी बा ना पी हरो गरा ना पी दूसरे दो पी बा सोई दन तो तो भी आती है वगैरह कोई फिर एक बार मिले अदकी अकोई यम नुवाई बो पाओ अमस्त अमक अकोई की मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन पुणे है तो ना कहाँ बस हाफ है तो ना मकोई है वो दी पुणे दा कोई साथ रहो ना तोआन तोआन बा सब्जेक्शन दे लाये तब हम बा कोई साथ रह सिंग सी दिदार तो की बकोई आम हम सी और है मकोई ना बंजर लगा मकोई उठा भी पाला लम कन ना मकोई हो वर इन्वायरमेंट दे देगे हो रहा सी यहाँ लाभ में सी मोई कराए दे तो बुंग तो कुछ तो होगी कहाँ मैं ना निगोन बन फास्ट फेस है तो ना कहाँ मतंग दा कोई सिगी के नोसे मेरे को आता हूँ तभी अरे कोम भी आता रहता हूँ मखोई की के नोसे आम पसे उसे मखोई ना हाँ ना उठा तो मैं फिर से मैं फिर दिल पर जा सिंह दोगा अरे ये क्लब ले रही पर मैं आम सिंह का वाली साना रहने ऐ कोई सही दे दा अ कोई नुवान बन जब मैं कोई क्रिएट हो गया ना कोई के नोता हुई फॉरेस्ट पाम में कुल लगा अरे सुबह भी ना हिंगन कदरा हाई बसे पंजन वाली साल में तुम दा हिंगन गनी हाई भी वाखल लो ले रहे हो फम से ना उठाया हो अदुगा मोइसो उनकरी दा हुई मकोई दिम ममसे मगा सयोर कुरिंग मपम सल सल ग मनी एन सल लेबो सुम सुम बगी के नोमा कोई तका होय अदो रे गदि सुम होय सोतना हिंग दो रे नेबो को अदना हिंगन बसम या मरो होय उ पाल सिम कोई थदो पक नो न ते को थार म तुम दु दा कोई गि सन गुम ब कर म सहन बिद्रबा अदे गि अकंग म मतम द सिम फर साइ बिरबा नापी हवल व पिले मतम द नापी खर से दो पितारती सही अनि होम दि एस्टैब्लिश तो होतो नै बको अदुना आई अब शो एन अपिन तो जने बसी कोई उ थाबस की वखलोन ले बिरी बदो अतु मथक तदा कोई सिम्पल शो दन गंदे बया दे है वखलोन सिम कोई ले बिना से है बिसम सिम से थमने
1: सिबे मंगसी की तरंगे रे बदा बन महोत्सव पालन तरंगे मतांग दा लोंगजम जोय कुमार चिपकन जपेतर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का
2: ꯑꯣꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯁꯨ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ꯫
3: ꯍꯣꯏ, ꯇꯥꯖꯔꯤꯕꯨꯡꯉꯣ꯫
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯕꯦꯝꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ꯫
3: ꯍꯣꯏ,
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫

0: Kungangi thauram tabikri.
1: कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: ꯃꯩꯈꯨ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯐꯣꯒꯤꯡ ꯇꯧꯕꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫
6: ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯅꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯦꯗꯤꯁ ꯀꯧꯕ ꯀꯥꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯀꯥꯡ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯤꯛꯏ꯫
7: ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯔꯨꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯕ, ꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯤꯛꯄ, ꯁꯔꯨ ꯁꯌꯥꯡ ꯆꯤꯛꯄ, ꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕ, ꯃꯥꯏ ꯉꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯥꯏ ꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯃꯄꯥꯛ ꯃꯄꯥꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫
6: ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯏ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫
7: ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯁꯤꯡꯗꯤ
6: ꯑꯆꯣꯟꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯂꯤꯠꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯔꯦꯄꯦꯂꯦꯟꯠ, ꯃꯁꯀꯤꯇꯣ ꯀꯣꯏꯜ, ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯋꯦꯄꯔ ꯃꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
7: ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ, ꯇꯌꯥꯔꯁꯤꯡ, ꯆꯐꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯀꯞ, ꯀꯧꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯊꯝꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫
6: ꯄꯥꯎ ꯌꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫
8: ꯀꯥꯏꯗꯨꯔ ꯑꯌꯨꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ?
9: ꯅꯥꯆꯤꯡꯈꯩꯒ HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯔꯨꯒꯦ ꯇꯧꯕ꯫
8: ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯕꯥꯅꯤꯗꯤ HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯦ?
9: ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗ ꯏꯕꯥꯅꯤ HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯕ꯫
8: ꯅꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦꯗꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯗꯦ? ꯅꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ꯫
9: ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯠꯇꯦꯗ, HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ HIV ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ,
10: ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ HIV ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯀꯞꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯗꯕꯅꯤ꯫
8: ꯑꯩꯁꯨ HIV ꯇꯦꯁꯠꯇꯣ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ, ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ?
10: HIV ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦꯜꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯦꯁꯠꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯗꯣ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏ, ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯕꯗꯤ HIV ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1097ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ, ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ꯫
11: ꯅꯥꯎꯕꯤꯌꯥ, ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯂꯤꯅꯣ ꯅꯪꯕꯣ?
12: ꯏꯆꯦ, ꯑꯩ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ,
11: ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅꯦ,
12: ꯑꯗꯨꯗ BSc ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯇ ꯊꯤꯔꯨꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ,
11: ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ, ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯑꯦꯠꯃꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯍꯤꯔꯦꯟ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤ,
12: ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯆꯦ
11: ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯨ ꯂꯩꯖꯕ, ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯦꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯅꯦ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ, ꯔꯦꯒꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ, ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯣꯏꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯔꯜꯁꯀꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ, ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯤꯕꯗꯤꯅꯦ EMI ꯄꯦꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯅꯥꯎꯕꯤ,
12: ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯅ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ,
11: ꯑꯗꯨꯅꯤ,
12: ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕꯗ ꯇꯝꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯏꯆꯦ?
11: ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯋꯥꯔꯨꯔꯅꯨ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅꯅꯦ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯥꯎꯕꯤ,
12: ꯏꯆꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯨꯔꯒꯦ,
11: ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯆꯠꯂꯨ, ꯑꯦꯛꯃꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯅꯔꯁꯤꯡ, ꯍꯤꯌꯥꯡ ꯍꯤꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯛ, ꯄꯦꯂꯤꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ, ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ 9436 67 6980 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 6909 158069.
13: ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯜꯁꯤꯗ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯅꯥꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯍꯨꯝꯐꯨꯗꯤ ꯁꯥ ꯉꯥꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯕꯤꯁ, ꯕꯥꯔꯗ ꯐ꯭ꯂꯨ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ, ꯁꯥ ꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯈꯨꯠ ꯁꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯥ ꯉꯥ ꯌꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯊꯣꯡꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯝꯒꯤ ꯁꯥ ꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯕꯤꯒꯅꯨ, ꯐꯣꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯦꯇꯅꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ, ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯌꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯌꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯍꯤꯡꯂꯒ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥ ꯐꯒꯅꯤ, ꯄꯥꯎ ꯌꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯥꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯐꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ, ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤ, ꯔꯤꯝꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜ꯫
6: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯣꯟꯊꯥ ꯑꯍꯜꯂꯨꯞ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯕꯤꯍꯥꯁꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯁꯟ 2026-27 ꯑꯣꯏꯅ BMLT ꯀꯣꯔꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ,
14: ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯁꯤꯠ ꯈꯔꯈꯛ ꯂꯧꯖꯒꯅꯤ, ꯇꯣꯄꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯄꯤꯖꯔꯤ, ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕ

0: रा कुरा था वंजा यही ता बिरम लिब्रो
1: है लेशिम बा
0: कुरा
1: कुरा आगे दी रेडी ओम सासी ना पोता पम है बद वो इडी बनी है बुआ
0: कुरा नशीय उक्ष देगी दी अकुई होम सी दा मी मग शिला नी
1: हाँ है कोई की होम सी दा मी मग सुहिं कल अगर दा बा कना नोन है
0: ए है रिकांडा लाकुला इतु इने इने सोम दा संगीरो
1: है बु हाँ ना उखी बगुम सुतोरे हाँ ए ये भीमल नत्रने ये भीमल ताते तवांसा है इभेमल आइने आइ नंगी तादे थवान जाऊने है अवांकुल की थवान जाऊने ने
2: तादा तादे दी अना ये याव देखो
1: इभेमल इबुं अना ये याव थे मतंदो नुंशी बनी था
0: खुरा इन्हें शिकदी क्रम न खंगने बिरमिनो आइ भाव में ता ताद्रे
1: है लेशें बा
0: खुरा
1: इसे लेशे आईगे खुल रुगी इसे लीने है महाप की ना मखाले काय अतुगा नंगी खुरा की ना अवांग ले काय नी है लेशें बा
2: तादा तादा का सुमना ठेंगर कनी हाय बसे न संदी मंग द पाव ब खक खलु दे
0: इने अदुदी खुराग मतम कोई ना उन्हें उद्रब नहीं ना नशी उन्हें बस इधर खुराग ना वही शन भीरमो आई इन्हें लेके दब का दो अम्म तो लोशलो कीगे
2: लोशलो रो
1: भैमल
2: तादा
1: नशी शन नम फमसी द लागली बसी बु
2: अते हिलारी तादा तादा अवांग कुंगी लंपाग मचिंगी जाम पांबी दो हाउसिक शो हाउरी ब्रो
1: नंग शिदी ओन थोक पनी दे भैमल
2: तादा
1: मतम गे ओन बसी द जाम पांबी ये दुगी चन फंबु कदाई दगी लेगे दगी नहीं
2: तादा तादा कोई की पुखी में पान दाहो बा कबूक ले दो हाउस एक सात ली ब्रो
1: सात किधर है
2: सात किधर है
1: पुखी दो सुपुन कर
2: करी है बा
1: मतम मद युम मधुगी युम्बु वही रंब थवान जाओ इस नशी दी कनाल इज इधर बा अल सिंगी युम मसिदा सहिदा अंगलरी बसी नहीं है बेमल
2: आई हाउरक पम आईगी कांगदोंग पारक पम खुंगंग तो नुंसी बनी था ले शाबी पुंक पारक बगी मतम अतुआई था हमिन कामिन नर की भी इशुंग इमान भी सिंग तुका कुंगी पुखी सो बता कुंगी लाइबुंग था सही अमगी शोय भद्रबा याव संगी था पल कांग जुलोन हरी उठा लिकोन साना बना सिंबा अमत ते हक चिथा रखी दा बनी था
1: इनके लगली भी ले शाबी मसा मया मधुगी मरकते सु नंग इहेन हेन पुनः मकिलु सिंग भी सु नंग नो वही की दो इभे म
2: मतम मतो ऐ कोई लोई नंग आउ की अदो तादा तादा दी लिकोन साना बसु याम न पांजर रखी बनी
1: अते इलाई दी इभे म
2: तादा
1: नंग दी इन पाल दे युम पान की बनी इमुंग अदु सु नुंगा याई फब इमुंग अमने हाइदना इबुंग न ताखिन हे इभे म
2: खुबा खुनंगी पुंसीदा मधुगी नुंगाई बदो कोई खिदे नोमा इथा थाजदा मागति कहा तो मिन बनु पादुगा
1: भेमर
2: इतम बागसिदा इलवै शानु पा अनीद बुसिना रम लगमा आई बुता दुख तुन सत्ते दादा
1: भेमर पावदा कुंगंग अदु दे सुताक नहा की ननाक ते लाग लगा नंगी अवा बदरे शरु यानी अदु आई आई गम की दिए भेमर
2: इपुरो इबन थंबीरम बखरा अदुना आई की सानुपा अनियत ओ मही मसिंग तमहल लखी बने मखोई तबु मी ओइरा बदी हाय दुना आई न सोक तबले तना ओ नरकी
1: मदो मामा ओइ बिए मगी अशेंग ब मचत नि हे बिए
2: मदो बुतादा नसीदी आई
1: मखोई मखोई दि मखुत मचा दो पाई दुना हाइना थांग ब तंबी बदन त makhoi makhoi tabu mi ma ma hen bahai ba se mama ma pa oi bai khoi gi ma thau ni nei be ba
2: ta ta
1: adu bu i thau pang thau lo bai khoi se hau juk ti makhoi gi yak na bahai ba do oi re re be ba
2: ngasi makhoi makhoi gi sangsar adu da mama oi bi ai gi chana phom lei tra ma le ai bui thau pi lak le ta da ai bui thau pi lak le ngasi di ai ha isa ani gi mama ni hai ba do madu phau ba hai an gi de ni ta da
0: ne ne
2: de shen ba
0: ne asum de ling chile si ni ne le ge dab ka do lushin male hore bani
2: phare phare ta da nasal amu chang ja ukhi ge
1: ye ma
0: khura chang na bu tok si mayam gi au ki sa su thang to bole hore bani
1: sangasi sangasi le shim

YouTube live streaming da thorum tabiriba marup singi mingkhara panjage khuman them noni lenthoi salam suman laishram ngangbam ranabir bhogen laishram bamcha singha liklai sonia lokrakpam nongmai them premananda pumnamakpu thorum mapung phan bibagi damak thagatpa phongdok chari mathangdamu lokha chariba isayasi मंगलान की इपाक तुदा फिम दगी करंब मंगलान नो मंगदबा अशुम न सहयोगबा पुष्परानी की खोंजेल दा दालों गुरु मयुम न सहिरिंग बा अमदी बॉय सोराय सम न सहिरांग बे सहिनी इसे यसीबु ताबी निंदुना खंबी रखली बा मरुप सिंह दी नंबोल ले मपोपम अवांग लेकाई दगी लेंथोई सलाम अमदी सकुंतला रेडियो ताबी रिबा पुमना मका तामी नजगी हाय नसु इबिरक ई खुदोल तमजरी पुन्ना तामी नसी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। हर श्रृंगार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। जरा वक्त मिला ले 10:31 और 6 सेकंड।

हो चुके हैं। तो चलिए आज के हर श्रृंगार की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ, फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत। एक बार फिर से बता दूं कि आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड, और आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार।

अलग अंदाज होता है। पहली मुलाकात की धड़कने हो या बिछड़े पलों के बाद मिलने की खुशी और उम्मीद से भरी जिंदगी, हर मुलाकात एक अलग तरह का एहसास देकर जाती है।

साहब का संगीत और लता जी की आवाज़, फिल्म ख़ानदान से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, ये बात तो है, जब किसी से प्यार हो तो फिर चाहे कितनी ही बातें कर लो, चाहे उनके साथ कितना भी समय बिता लो, मन हमारा भरता नहीं है। दिल हर बार ये दुआ करता है कि ये वक्त रुक जाए, काश ये वक्त थम जाए, मगर ये वक्त का पहिया है दोस्तों, ये कभी रुकता है। फिलहाल अगला गीत होगा वक्त फिल्म से आशा जी की आवाज में।

अरे ये बात नहीं की, अरे वो बात तो हम भूल ही गए। तो जब बातें अधूरी रह जाती हैं तो हर मुलाकात भी अधूरी रह जाती है। किशोर कुमार और लता जी की आवाज आपका इंतजार कर रही है फिल्म कामचोर से ये गीत।

10:55 और 28 सेकेंड हो चुके हैं. अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में. फिल्म का नाम है कुदरत. इस गीत के बाद होगा ठीक 11 बजे समाचारों का सिलसिला आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट. और उसके बाद 11:40 पर गीत मेरे मनमीत संग रहूंगी आपके मैं अर्पणा. फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए और इस गीत के बाद जरूर सुनिएगा एफएम गोल्ड पर समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। बोथ हैड स्टेप्ड डाउन आफ्टर द नेम्स सरफेस्ड इन द अलेज्ड राम टेंपल डोनेशन एम्बेजलमेंट केस। Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, members of Parliament, senior officials and other dignitaries paid floral tributes. In Jharkhand, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

0: Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these codes, before these numbers, if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza aarthik khabrein aap tak laate hain. Shrotaon, aaj kyunki somvar hai aur har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe is karyakram mein shamil karenge. Is karyakram mein vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn aap humse pooch sakte hain. Inhe poochne ke liye aap hame call kar sakte hain 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे श्रोताओं जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार दीपशिखा जी कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन
2: धन्यवाद प्राची
1: श्रोताओं कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ एशिया के शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग आधा प्रतिशत बढ़ा जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई
0: Dalal Street kicked off the trading week on a strong note with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains marked the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.4%, while the small-cap 100 index gained more than 0.7%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4% टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक 3.5% से अधिक महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks Quality Tilt Index added 1.4%. In contrast, PSU Bank Index shed 1%. Hospitals as well as IT fell 0.6%. And focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था. दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
2: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है. दूसरा, जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो खत्म हुआ है उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी. क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप जीएसटी लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं, बेहतर ही रहेंगे. तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है.
0: Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
2: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
0: We'll come back to that. But before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
3: Namaskar, sir.
0: Namaskar.
3: Deepshikha, madam, namaskar, ma'am.
2: Namaskar, Amit Ji.
3: एक तो निशित सर ने सवाल पूछ लिया है किससे रिलेटेड, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में. पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में, पिछले जो तीन महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी, तो क्या रीजन था? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई, तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद।
2: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट ले, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फायदा उसको काफी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर। और अगर आप नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहां पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफी है, तो इसलिए उसका फायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है। कॉपर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है। और दूसरा आपका जो सवाल था
0: परफॉर्मेंस, यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
2: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफी हद तक डिसरप्टेड थी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है।
0: Right.
1: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बहुत देखिए बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में, तो इसे आप अब आज्ञा ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में, या निवेशकों के लिए? साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूंगी मगर इसके बाद।
2: प्राची, अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
1: जी।
2: तो ब्याज दरों का मूवमेंट और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है, अपना जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
1: जी।
2: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे।
0: या प्राची, यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, बट दीपशिखा, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक वी सॉ प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटिंग दैट सानन प्लांट ऑफ द सेमी कंडक्टर्स, यू नो, वेर इन इंडिया वुड बी प्रोड्यूसिंग दैट प्लांट, द सीजी प्लांट वुड बी प्रोड्यूसिंग मोर देन 5 billion चिप्स, यू नो, एनुअली, एंड दैट्स ह्यूमंगस नंबर considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially from countries like China and Taiwan, so on and so forth, because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
2: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at. And the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything.
0: Across the board, yes.
2: Across sectors.
0: Yes.
2: So definitely it is a sunrise sector. But we also have to keep in mind the thing one fact, which is technology can become redundant very, very soon. Mm. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, mm-hmm. you have some of the sectors which have an interplay with infrastructure development.
0: Electronics,
2: definitely. Yes. So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it, as is mm-hmm. expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer, sectors, the FMCG.
0: Absolutely.
1: श्रोताओं कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं ये नंबर्स हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ आज एशिया शेयर बाजार मिलेजुले रुख के साथ बंद हुआ ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं केशव जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन कृपया अपना सवाल पूछिए
4: धन्यवाद मैडम ये हमें दो बातें पूछनी है यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम आते हैं एफडी बनाने जाते हैं तो ये यूलिफ क्या चीज होती है आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक ये तेल वो खत्म हो जाएगा जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा धन्यवाद
2: केशव जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ कच्चे तेल के लिए तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें काफी हद तक लॉस बना हुआ है अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ तो यूलिप में जो समस्या रही है एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा आपको नहीं मिल सकता है दूसरा एक वो मिक्स प्रोडक्ट था उस निवेश के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देता था तो कहा यह जाता है कि या तो आप एक निवेश के लिए आप अलग एक प्रोडक्ट लें और इंश्योरेंस के लिए आप एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें इंश्योरेंस में आप निवेश नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जो है वो अलग होता है
0: नेक्स्ट कॉलर इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई सेतुपति
5: गुड इवनिंग टीम
0: गुड इवनिंग
2: सेतुपति
5: दिस इज रिगार्डिंग द एथेनॉल 90% and what time it will be implemented and how much gain we can get for example in 0 to 3 years time
0: mm-hmm. okay
2: ethanol I think government is very clear on the implementation plan they have given some submissions before the Supreme Court also government is very very upbeat on it There are some issues which have been reported, but I think government has sort of...
0: In fact,
2: they have clarified in a very big
0: yes,
2: way.
0: In fact, Deepshikha, if I may add to that, there is no fixed kind of a timeline for that, for the ethanol thing to come up. But yeah, pretty soon, Setupati, if I may say, it's going to be implemented pretty soon, in a pretty quick timeline.
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
0: Yeah, Deepshikha, if we talk about Prime Minister's visit to Indonesia, and of course, you know, the Australian tour and the New Zealand tour is also to come up. If we specifically talk of Indonesia, the India-Indonesia ties has been been upgraded to comprehensive strategic partnership in 2018 itself, and the mm-hmm. Prime Minister in his departure statement as well said that we are going to take forward this, you know, the partnership to the next level. People-to-people ties, trade, defense, security, so on and so forth. How do you see this?
2: No, absolutely. Indonesia, if you look at even within the India-ASEAN, framework, Indonesia is now one of the number one trading partners. Mm. India imports a lot from Indonesia. So definitely, and what we are trying to do is, and what India has been trying to do is, work with its Asian partners, create that ecosystem within the Asia. You know, we had the Look East policy, and I think all the entire Indian Ocean initiative.
0: Mahasagar. Yes.
2: So the entire focus is to develop this entire area, entire economy of that area, it is of strategic importance. And now, you know, when we saw what happened with the Hormuz Strait. Mm. So keeping the passages open and all these, I think, are very crucial questions and crucial issues which are on the table, which are likely to be taken up in this three-nation tour.
0: Yes.
1: And Faridabad se humare saath Sachin jud rahe hain. Sachin ji, kripya apna sawal poochiye.
6: Hello, Market Mantra team.
1: Hello, Sachin ji.
6: So, I'm specifically asking a question regarding the defense sector and the commodity gold. So, what is your view on a short range, short period of 4 to 5 months for defense sector and gold?
2: Sachin ji, you know, you are looking at a very short-term horizon for the defense sector. Mm-hmm. But if you look at, the emphasis that the government is giving to the defense, it is definitely a sector that should be looked at from medium to long-term. And for short-term, the issue is defense sector stocks have already seen valuations rise. So I would not recommend a very short-term view on this sector.
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: हेलो, गुड इवनिंग मैम, सभी को
1: गुड इवनिंग।
7: आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है, जैसे मैम ईस्टर्न नोएडा वो हमें खरीदना ठीक है, और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं, और चांदी भी, और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था, अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं, या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं, या बढ़ भी सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए मैम।
2: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफी उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है।
0: राइट, एंड मूविंग ऑन टू ऑयल सेक्टर नाउ, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल मॉडरेटली टुडे आफ्टर ओपेक प्लस अग्रीड टू फर्दर इंक्रीज इट्स आउटपुट टारगेट्स फ्रॉम ऑगस्ट। Brent crude was trading 0.2% down at $71.95 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.2% down at $68.55 per barrel when reports last came in. Deepshika, your comments on crude, especially, you know, with the opening of Hormuz, even if it's a partial opening, and also, you know, the easing of tension, almost from around $120 to $71, and the WTI trading at around $68. How do you see this panning out in the coming days? Would it be seeing another spike or coming down to around $50 or $55?
2: Well, I think for Indian economy, crude sliding to these levels, definitely a very good news, very positive news. But if you see, you know, the kind of destruction that the entire oil and gas infrastructure saw during the conflict, there is apprehension that the supplies may not rise to pre-conflict levels. So while, you know, OPEC has said, OPEC Plus, they want to, they will boost supplies. There's Venezuela crude also, which is sort of coming to the market, which will keep the pressure on in the crude market. It is expected that it may sort of not really dive below, but remain at these levels.
0: And in the Indian bullion market, 24-karat gold was trading 0.3% down at 1,47,410 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.2% down at 2,37,330 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein August anubandh wala sona 0.3% ghatkar 1,47,000 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki September anubandh wali chandi 0.1% ludak kar 2,37,069 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. अदीपशिखा कार्यक्रम में आने हमारे श्रोताओं के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद प्राची.
0: थैंक यू दीपशिखा. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. The benchmark domestic indices continue the upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend. And global crude oil prices decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Prachi Priya signing off. Goodbye.
8: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
9: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:46 और 24 सेकंड हो चुके हैं। अभी अभी जो आपने गीत सुना वो आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था। फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना और आज आपके साथ गीत मेरे मनमीत में है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। लीजिए आनंद इस गीत का। आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।

11:55 और 4 सेकंड हो चुके हैं। अभिजीत की आवाज में फिल्म यस बॉस से ये गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज होगी, फिल्म का नाम है संघर्ष। इस गीत के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और गीत के साथ ही अर्पना को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर खतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30 बजे से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

सावन को आने दो फिल्म से आपने ये गाना सुना। जसपाल सिंह की आवाज में गौहर कानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजकमल ने। उमस भरी गर्मी, बारिश का बेसब्री से इंतजार, शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद फिर वही सोमवार की भागदौड़। दिन भर की व्यस्तता और थकान के बाद अब जाकर मिले हैं ये सुकून भरे लम्हात जहां मन ठहर सा गया है। ऐसे ही शांत पलों में पुराने गीतों की मधुर धुनें दिल को सुकून देती हैं और दिन भर की सारी थकान जैसे हवा हो जाती है।

पहली फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

बदलते रिश्ते फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आजकल अपने पसंदीदा गीत सुनने के अनगिनत जरिए मौजूद हैं। मोबाइल, म्यूजिक एप्स और इंटरनेट पर तो बस एक स्पर्श की देरी है और मनचाहा गीत हमारे सामने होता है। लेकिन इन सब के बीच भी जब अचानक रेडियो पर वही पसंदीदा नगमा सुनाई दे जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उस पल की खुशी, वो अनायास मिलने वाला एहसास और उस गीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। शायद इसलिए कि रेडियो सिर्फ गीत नहीं सुनाता बल्कि उनसे जुड़ी यादों, भावनाओं और अनकहे एहसासों को भी फिर से जिंदा कर देता है।

फासले फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फासले फिल्म से गाना आपने सुना लता मंगेशकर की, माफ कीजिएगा शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा गीत सुनना किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं होता। जैसे कोई बिना बताए हमारी मनपसंद चीज हमें उपहार में दे दे और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहे। ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज ही तो जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं। इसलिए रिश्तों में बड़े नहीं छोटे छोटे तोहफों का आदान प्रदान भी होता रहना चाहिए, क्योंकि तोहफों की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा अपनापन और स्नेह मायने रखता है। किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने के लिए कभी कभी बस एक छोटा सा उपहार या प्यार भरा एहसास ही काफी होता है।

रजनीगंधा फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। और हाँ, जब हम छोटे छोटे तोहफों की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बहुत महंगे हों। एक छोटा सा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी किसी के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखेर सकता है। ये जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता, लेकिन इसकी महक दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी, लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में। मखदूम मोहिउद्दीन ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात की खामोशी में अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरने वाला रजनीगंधा फूल सचमुच अनोखा है। दुनिया की महंगी से महंगी खुशबुएं भी इसके सामने फीक

हल्की सी लगती हैं। एक बार इसे आजमा कर तो देखिए, एक बार किसी को तोहफे में दे कर तो देखिए। यकीन मानिए, इसकी महक इतनी मनमोहक होती है कि रात भर आपका साथ निभाती है और सपनों तक को महका देती है।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके ये 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए अनेक

0: वस्तुएं जो प्रदान की गई वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराओं कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मेट किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ऑफ बहरीन एंड डिस्कस्ड वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। डॉक्टर एस जयशंकर अराइव्ड इन बहरीन फ्रॉम कतार on the second leg of his four-nation visit to the Gulf region, which also includes Kuwait and Oman. In a post on X, Dr. S. Jaishankar said he was honored to have an audience with King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also said it was a privilege to meet Crown Prince and Prime Minister Salman bin Hamad Al Khalifa during the audience. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the king. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav has virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with the extension of the Tanakpur-Pilibhit rail service up to Shahjahanpur. He said the new service fulfills a long-pending demand of people living in the Terai region of Uttarakhand. Central Bureau of Investigation has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with four criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Roads Organization. These states and union territories are Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches and investigation is continuing. In FIFA World Cup, round of 16 match between Portugal and Spain is underway at Arlington in US. Another round of 16 match will be played between co-host US and Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday, with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga, Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts. And that

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

एक दिल सौ अफसाने फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, जैसे इस चमन में फूल ही फूल खिले हों। तुम्हारी मुस्कान से हर सुबह सुनहरी लगती है और तुम्हारी याद से हर शाम सुरमई हो जाती है। जीवन की राहों पर जब भी नजर उठती है, हर दिशा में तुम्हारा ही एहसास साथ चलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू से पूरे उपवन को महका देते हैं, वैसे ही तुम्हारा स्नेह मेरे जीवन के हर पल को महका देता है।

बॉयफ्रेंड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उस नजर को सलाम जिसमें अपनापन भी है, स्नेह भी है और अनकही मोहब्बत का एहसास भी। एक ऐसी नजर जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाती है, थके हुए मन को सुकून दे जाती है और जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बना देती है।

हसीना मान जाएगी फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब प्रेम सच्चा हो तो कदम सोचकर नहीं दिल की धड़कनों के साथ चल पड़ते हैं। उस बेखुदी में मंजिल से ज़्यादा साथी का साथ मायने रखता है।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज़ में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथी फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया नौशाद अली ने। जब कोई दिल में इस तरह बस जाए कि हर ऋतु उसी की खुशबू बन जाए, तब प्रेम शब्दों से नहीं मुस्कुराहटों और एहसासों से जिया जाता है।

लव मैरिज फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। झूमती रात की खामोशी में चांद भी जैसे मुस्कुरा रहा है, दिल की अनकही बातें हवाओं के संग बह रही हैं और हर पल प्रेम की एक नई कहानी बनता जा रहा है।

असली नकली फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सच्चे प्रेम में विश्वास और समर्पण जितना गहरा होता है उतनी ही गहरी उसे संभाल कर रखने की चाह भी होती है। प्रेम केवल खुशी का नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय के प्रति संवेदनशीलता, चिंता और उसके साथ हर पल बिताने की आकांक्षा का भी नाम है।

आरती फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जिससे सच्चा प्रेम हो उसके बिना ना मन को चैन मिलता है, ना जीवन की कोई खुशी पूरी लगती है। उसकी याद हर पल साथ रहती है और मिलन की चाह मन में हमेशा बनी रहती है।

वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 37 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said India and Indonesia have elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. In Andhra Pradesh, the fishermen rescued after a fishing boat capsized off the Visakhapatnam coast has been brought ashore safely, while the search operation for the 6 missing fishermen has been intensified. According to an official release, the rescued fisherman Kari Chinna was airlifted by an Indian Navy helicopter to INS Dega and shifted to a hospital for treatment. He survived by swimming to a merchant vessel which rescued him. The search and rescue operation is continuing. Chief Minister N. Chandrababu Naidu has directed officials to intensify the search for the remaining 6 fishermen. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch, Amit Garg, has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. Mourners dressed in black flooded Iran's capital Tehran for a funeral procession yesterday honoring the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's flagged draped coffin along with those of several family members was carried on a truck decorated to resemble the ornate latticework surrounding the shrine of an imam. The mourning will continue through Thursday when Khamenei will be buried at the Imam Reza Shrine in Mashhad, his birthplace. In the FIFA World Cup, the round of 16 clash between Portugal and Spain remains goalless at 0-0 with a match in the second half in Dallas, Texas. The other round of 16 match will be played between co-hosts the United States and Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. India Meteorological Department issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for today. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दिले नादान फिल्म से आपने गाना सुना। लता और किशोर की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात सुरमई हो, चांदनी अपनी नरम चादर बिछा रही हो और हवाओं में फूलों की भीनी भीनी महक खुली हो, ऐसे लम्हों में ये गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो दिल में उतर आते हैं।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इसे लिखा जानेसार अख्तर ने और संगीत दिया खयाम ने। सुरमई रात ही रात की अपनी ही एक खामोश जुबान होती है। चांद की चांदनी, तारों की टिमटिमाहट और ठंडी हवाओं की सरगोशियां मिलकर ऐसा समा रच देती हैं जहां हर धड़कन किसी भूले बिसरे गीत का सुर बन जाती है।

राम तेरी गंगा मैली से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इसे लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म से आपने गाना सुना। लता और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुर से जीवन संगीत बना और संगीत से हर एहसास को एक नई पहचान मिली। कुछ धुने मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ यादों को फिर से जगा देती हैं, तो कुछ चुपचाप दिल की गहराइयों में उतर जाती है। इन्हीं मधुर सुरों के साथ जीवन के हर रंग को महसूस करें, जहां हर गीत एक कहानी है और हर कहानी में धड़कता है एक एहसास।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्यार और खुशियों का निमंत्रण है। आज की ये शाम मुस्कुराहटों, मधुर सुरों और दिलों की धड़कनों के नाम है। आइए संगीत की लय में खो जाएं और इस खूबसूरत शाम को प्यार के रंगों से सजा दें।

लम्हे फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चुग के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रो नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियाज लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर व्हिच करंटली एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ अराउंड 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल विद 38 डेवलप्ड कंट्रीज ओपनिंग देयर मार्केट्स टू इंडियन प्रोडक्ट्स थ्रू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स. These countries include the United Kingdom, Oman, the UAE, and several others. Addressing the Council for Leather Exports National Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. Reserve Bank of India has announced that the government will auction dated securities worth 32,000 crore rupees on Friday to raise funds. The auction will be settled on the 13th of this month. It includes the reissue of the 6.36% government security 2031 worth 21,000 crore rupees and the 7.71% government security 2066 worth 11,000 crore rupees. The government has also kept the option open to accept additional subscriptions of up to 2,000 crore rupees for each security. According to the RBI, the auction will be conducted through its Mumbai office using the multiple price method. India Meteorological Department issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for today. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Vidarbha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In the FIFA World Cup, Spain defeated Portugal 1-0 in a closely fought round of 16 clash in Dallas, Texas to book their place in the quarterfinals. Spain's Mikel Merino scored the decisive goal in the 90th minute plus stoppage time. In the other round of 16 fixture, co-hosts the United States will take on Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. The match will decide the final quarter final spot. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts. And that is the end of this news.

हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

हम भी यही चाहते हैं कि आपका प्यार जिससे है वो आज भी रहे और कल भी रहे। ये गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तेरे मेरे सपने फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। नीरज द्वारा लिखा ये गीत है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

दोस्तों, दोस्ती में यही फायदा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की बात का यकीन किया करते हैं और पहले भी किया करते थे। जो बात कह दी बस पक्की हो गई।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, ताजमहल फिल्म से ये गीत था। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत था और रोशन का संगीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.1 MHz पर FM गोल्ड चैनल, और कार्यक्रम चल रहा है हमराही।

0: तीन देवियाँ, फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था एसटी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे सच्चा झूठा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम मुझसे

और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों का गाया हुआ, वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

चोरी चोरी, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हंसल जयपुरी की शब्द रचना थी और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे राज फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलशन बावरा का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, दिल में कितनी बातें होती हैं ना। कुछ बातों को आप अपनों से साझा कर देते हैं और कुछ हम अपने जहन में दबा कर चलते रहते हैं, लेकिन जो असली दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते और ना ही आपकी बात का तमाशा बनाते हैं, होता है ना ऐसा, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और अब अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की लिखी रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों जी तो हमारा भी नहीं करता कि हम आपको छोड़कर जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। समय कह रहा है कि अब चले जाना चाहिए, लेकिन अगले कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कल गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। श्री गर्ग ने कहा कि आधुनिक मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क, डार्क नेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थों और समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं के पार काम करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यूक्रेन ने रूस में साइबेरिया के ओम्स्क स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमले के कारण ओम्स्क रिफाइनरी में आग लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से लगभग 2700 किलोमीटर दूर और कजाकिस्तान के साथ रूस की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र के गवर्नर विटाली खोत्सेनको ने कहा कि रूसी वायुसेना ने हमले में शामिल अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ गीत तो ऐसे होते हैं, दिल करता है हम भी साथ साथ गुनगुनाते रहें। मना किसने किया है? जी हाँ, गुनगुनाइए ना। दिल ने फिर याद किया इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, सोनिक अमी का संगीत था और जीएल रावल की रचना थी। अगला गीत आप सुनेंगे फागुन फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलालाबादी की रचना है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने।

0: सो कितने अच्छे लगते हैं ना ये गीत। और जब जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें इनकी लाइंस जो है बहुत अच्छे तरह से रट गई हैं। और पहले तो भगवान कृष्ण के जो भजन है लोग इन गीतों के माध्यम से इन्हीं धुन पर ही बना लिया करते थे। खैर, अगला गीत आप बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म का है।
1: ये झूम

आपको मैं बता देती हूँ, ये फिल्म थी नई राहें और आवाज़ हेमंत कुमार की और लता मंगेशकर की थी। गीत को लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा था रवि ने।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को सुनते हुए आनंद उठा रहे होंगे और साथ ही साथ गुनगुना भी रहे होंगे।

मदारी फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फारूक कैसर ने गीत के बोल लिखे थे और तर्ज बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के। इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सच में जो मेहनत करना जानता है धरती उसे पुकार कर कहती है कि मुझे छू लो। और जो मेहनत करता है ना दोस्तों, वो बहुत कुछ सहन करके आगे बढ़ जाता है और अपना नाम रोशन कर ही देता है। पैसों से शोहरत नहीं बनाता बल्कि कर्म करके ही शोहरत कमाई जाती है।

दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमारे साथ कोई साथ देता है किसी काम में, और साथ देने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमें साथ मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। घर में भी हम लोग जब काम करते हैं, हमारे घर के सदस्य जब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और काम जल्दी निमट जाता है, फिर हम आराम से बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप

को जहाँ भी मौका मिले आप अपनों की तो कम से कम ज़रूर मदद कीजिए, ताकि हर कोई एक दूसरे को सहारा समझे और एक दूसरे का सहारा बने। हर कोई ये सोचे कि कोई काम करना किसी के लिए या किसी के ऊपर बोझ नहीं है, हमारे अपने हैं जिनका हम साथ दे रहे हैं।

अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

यादगार फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। अगला गीत आप सुनेंगे बैजू बावरा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

जी हाँ दोस्तों, साथ ऐसा ही होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में दी गई चीज़ों का उदाहरण दे सकें। और अब अगला गीत श्री 420 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। आपको ज़रूर समझ आ गया होगा ये कौन सा गीत बजने वाला है।

दोस्तों, अब अगला गीत आप सुनेंगे। आपको ये गीत पसंद ज़रूर आएगा और ये कहना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं और इस फिल्म में, और फिल्म का नाम तो आप जान ही जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म है। और साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इस गीत को लिखा गया तो लिखने वाले ने भी ज़रूर ईश्वर की रचना को बहुत सोच विचार किया होगा और ईश्वर ने भी तो सोचा होगा कि मैं जिस इंसान से इतनी उम्मीद करता हूँ, यहाँ से भेजता हूँ, वो जाकर भूल जाता है क्या। आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया है कि कौन सी फिल्म है, किसका गाया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुकेश का गाया ये गीत है।

200 गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और मुकेश ने अपनी जादुई आवाज में गाया था और फिल्म तीसरी कसम से ही गीत था। वाकई में ही धन दौलत सब यहीं रह जाएगा और अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। खैर, अब समय हो रहा है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया और

0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes trip.

FM गोल्ड पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अब कार्यक्रम होगा भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति रचना आपने सुनी सांझ और सवेरा फिल्म से, शैलेंद्र के बोलते और शंकर जय किशन का संगीत। दोस्तों, अकेले में इंसान अपनी बात को केवल उसे ही सुना सकता है ना जिसे वो सच्चा प्यार करता है और उसे मालूम है कि उसके भावों को कोई समझ नहीं सकता केवल उसके अलावा।

काबुली वाला फिल्म से गीत आपने सुना, हेमंत कुमार का गाया हुआ, गुलजार के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे उपनिषदों में कही गई हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों इधर उधर उलझते रहते हैं।

सच बात है कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसे ही फल पाता है, और उसकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है। हम जैसा उसे मानते हैं वैसा ही पाते हैं।